0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: சுப பிரபாத் குருவாமா.
2: சுப பிரபாத். பச आज हामी के विषयमा छलफल गर्छौ?
1: वैदेशिक रोजगारीको विषयमा गुरुआमा.
2: वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? पालै पालो भन त.
3: सिप सिकेर तथा कामको बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ गुरुआमा.
2: हो, अरू भन त.
4: वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि घर परिवारसँग राम्रोसँग सर

0: सुविधा पनि छ।
1: स्थान भिन्तुना एवान ट्रेडर्स, चौतारा सागाचो गोडी नगरपालिका, वडा नम्बर 5 को कार्यालय अगाडि। सम्पर्क नम्बर अंकित श्रेष्ठ 98 41 057 105।
2: एलम्बु FM 89.6 MHz।

0: जुगा त दिने नै पुर्से छपरङ
1: योगा देखाइछु
2: ओहो सम्धिको टिम विदेश देखाइमा दोखा बम
3: तिलिगेन खम्बल यो आलिगन किन
4: ठेगाम
2: चुर्किएर आँगा त घो बढिम खेता खम्बाले सम्धि
3: खाल आँगा
2: थिए नि
3: ओहो सम्धिलो आँगनी
2: चुरिन खाऊ चुसी आज पन फेसोर्ची यार मङ्सिर 9 गते जेभा साइद मुल्ला ब्रेलसङ लातोला सम्धि।

0: बसंत को माया लुहावा चलता, 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलता, कसे कसे ले तीतो मीठो याद हर तो दिए के होलन है ना। हो ती याद हरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: आयो तकाने सामी सिते कुसुमे।

वो राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा, खुशी के आंसू और बात है लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: रंग ठेनी गदे थे समझौता ला अंत्य छो न लाभ्रे विश्वास लाभ्रे हमसुला कि बिसी रंग तिगा लसुला रंग से याकर गी कानूनी कागजा तैयार लसुला जुमरी समझौता ला शर्त गदे तमुला थेन्दे रंग से ठेनी गदे हस्ताक्षेप लाभ्रे लगभ लसुमुला चुसे चुदा अदालत भी कानूनी बाध्यकारी समझौता सुमुला परमेश्वर से नंदा पिंसुब करार ला प्रतिज्ञा रोसी दस्तावेजी हस्तक्षेप लाभभन्दा लानन गेन मुला चु आत्मरे तबा करार हिन्बा चुसे चुदा आत्मिक ग्लारी छम्बे प्राकृतिक ग्लारी एन बाध्यकारी सम्झौता सुमुला आत्मिक माध्यम ग्याम करार ला प्रतिज्ञा यङमा कदे गेन ताम हिन्बा चु करार से बेनन प्राकृतिक नियम कदे रे शासन लमुला चु संसारी हाजिबै एन तामसे चुला विरुद्ध छेबरे अहम तिग्द विषम आत्मिक ग्ला प्राकृतिक ग्ला भन्दा फिरी मुला देन आत्मिक ग्लारी सैतानला हाजिबै नोन सैतान शक्ति से चुदा थ्रुबा ग्याम काबरे अहम तिग्द विषम थेनी गरी परमेश्वर विरुद्धला हाजिबै नोन युद्ध डाबरे असमर्थ मुला आनन्द लौ परमेश्वर तिनी मुसुला थेन्द्या हाइमा दमन यङला बेनन आवश्यकता कदेला लागरी यङला पुरन प्रदायक लसुमुला चुरोला यङदा लब करारला प्रतिज्ञा हिन्दा आमेन परमेश्वर श्री रङ्गले जीवन रि प्रशस्त मात्र आशिष दिन्छु प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश यङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रि रङ्गनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 धन्यवाद हस् त त्यो समय बिदा दाजी रङ्गनी छङमदानु जय मसी नमस्कार
1: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।